0: आप
1: पढ़ना है
2: ओ ब्रेव एंड यंग वन यूनाइट इन वननेस रिमूव ऑल जेलसी एंड एंगर और हेट्रेड अमंग अस एंड यूनाइट टुगेदर वी आर नॉट टू डू बैड टू द वर्ल्ड आवर ड्यूटी इज टू डू गुड फॉर द वर्ल्ड
1: हमें